पटक पटक लॉन्डो के दिल पटक पटक सासे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: ढंग तेरा पावला सा ढंग तेरा मुझे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ आई एम द बैरेस्ट मदर ऑफ
1: हार्ट।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: हाय बेबी,
2: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
1: नहीं आ रहे मतलब?
2: Means I'm not coming back. I can't.
1: But I love you.
2: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूँ।